दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Mamma, bai du haveje.
1: Tarifla, soni agate buni. Mamma ibece mi ke muluwa.
0: Papa, gaadi jehni e.
2: Tarifla maadu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school anda.
4: Tumhi ne to kaha tha. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस पर
5: मामा फोन है का हां मादमारे तैयार दावी तना कड़ी वाइपर कुराना
0: मामा बस फोन का डोंटा
6: कोको डोंटे कमी कड़ी गाले नुले वेने दे सोनिया गाता
7: एहनी गुलुंता बदहि कुराफा दान एम गातु गावा गुलुंतका एम फुरतम इस्कंदेमा

मी वहाँ के इस प्रोग्राम आया कि मैं बदल को ले आलोगन आए चकने से मेरे आलोगन में मैं बदल को ले आठ विशल बेचो ने मैं सारा हाथ दुगा वरक गिना बाया को ऐबा उले इंगे वरक गिना एकी कांकम का मजा कोला वागु थे द कोला एकुएरिक ना आदि आई लाग बेंबर उन्नाय को मितनुगा ऐस ऐबती भी वरक गिना फरायता है मा आलोगन में उम्मीद करने मित सारा हाथ दुगा वरक गिना बाया का बदल में वहाँ का दखा ले वेन कमा ते मेरे मैं सारा हाथ दुगा बला दारुगा मी वरा वा मार्डो को मी फेन्नानी देंग ओडमति कोडको बाणको रेगणवे महा बडक नुए गेंगे देंगे हारी तिकोशे नें गोंडितव गमे हार बत बि वरा गिना फरात कों इशीन दे लागें रट्टे हिना को वाहक द काला मी ग्रुप ग्रुप देंग वरा गिना बयको उलेक फाहन कोला वरा मी एक्वरी ना को मजा वकत कोले मी हेद कोला मदनी दे मिरेगे मी वाहक इस प्रोग्राम गालगुन में वाहक द कालाणी मागुमच्चा कुनी अलणी मी की वेगेंतो देंग ए मी तार मी सारा हदम बेफुना बदल को वाहक द काला मी मावलु गालगुन में वाहक द कालाणी एमा ए मी एहन तेरेका बेफलका बदल वेलन देंग गालगुन में रीति लवेका न्याय साबु दानी